0: जटिल शल्यक्रिय सेवा, मेजर सर्जरी,
1: दाँतको इम्प्लान्ट गर्ने, दाँतको ओपिडी सेवा।
0: सम्पर्क ओम शान्ति डेन्टल हस्पिटल, दमक 5 गोल्डाही रोड, डिम्याक्स अगाडि। सम्पर्क नम्बर 023-575-906। ओम शान्ति डेन्टल, मुस्कान सही।

मा जाम राति धुमधाम राइट छ फन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइट छ सुपर फन एल्डर्स लभ इट सो डु द यङ इट्स सेफ इट्स प्लेफुल क्याट

धुमधाम ताकि धुमधाम राइड सपन नया ईवी मेरो टियागो ईवी संग लाइट अप सुपर फन एल्डर्स लव इट सो डू द यंग इट्स सेफ इट्स प्लेफुल गेट द

0: कविता ना आठ कुछ कारण है मेरे कारण बढ़ाना हन्ना कुछ तेरे किन्हीं कोई आवाज़ नहीं आई है
1: आओ सबने अरे तबर तेरा आगे नहीं सा आराम करने को अच्छा बना रहा है ना
0: मगाऊं निशा दीना को कराऊं निशा दीना कई बार मैं तेरे को कुछ काम